0: राजधानी।
1: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट CA।
2: पंजाबी दिल अंग्रेजी वाइब CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया हुए छा गया हुए।
3: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।
4: सस्ता

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हें मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320। CJMR 1320।

महकती है सदियां खुशबू का दर है, ये शहरे मोहब्बत मेरा हम सफर है। केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें, है दिलकश ये मंजर। जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है। है परियों के महलों के किस्से कहानी, झीलों को जोड़े है झेलम का पानी। सफर तू बता मुझको चलना किधर है, मुझको तलब खुद से मिलना किधर है। जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।

0: सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: जब करेगा दुआ कोई यार के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

जब तू साथ नहीं होती तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: ओ भाई बीटी मत दे, लाइन दे। अंडा नॉनवेज नहीं होता और बियर दारू नहीं होती।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: आप सुन रहे हैं शहर की आवाज CJMR 1320 रेडियो, 1320 रेडियो है ना। अब आप शहर की आवाज CJMR 1320 रेडियो सुन रहे हैं। ये है CJMR 1320 शहर की आवाज। अब आप शहर की आवाज CJMR 1320 रेडियो सुन रहे हैं। विविधता और संस्कृति की दुनिया की खोज करें और देखें कि एक समृद्ध प्रसारण इतिहास कैसा दिखता है। जिन समुदायों को हम सेवा प्रदान करते हैं उनसे लेकर हमारे द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों तक CJMR 1320 वेबसाइट पे सब कुछ है। आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं और देखें कि हम CJMR 1320 पर शहर की आवाज क्यों हैं। ऑन एयर, ऑनलाइन और अब फोन ऐप पर अधिकारित CJMR 1320 ऐप से अपना पसंदीदा स्टेशन सुन सकते हैं, साथ ले जा सकते हैं, लाइव शोज और पिछले एपिसोड सुन सकते हैं 24/7। CJMR 1320 से जुड़े रहें, आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें और कभी भी चूके नहीं। CJMR 1320 की अधिकतम ऐप अब उपलब्ध है। ये गलत, कीप गोइंग, ओके। ऑन एयर, ऑनलाइन और अब फोन पर अब आप अधिकारित CJMR 1320 ऐप से अपने पसंदीदा स्टेशन को अपने साथ ले जा सकते हैं, लाइव शोज और पिछले एपिसोड सुने और 24/7 CJMR 1320 से जुड़े रहें। आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें और कभी भी चूके नहीं। CJMR 1320 की अधिकारित ऐप अब उपलब्ध है। अधिकारिक CJMR 1320 ऐप के साथ हमारे स्टेशन से जुड़े रहना इतना आसान कभी नहीं रहा। अब आपके पास CJMR 1320 लाइव स्ट्रीम, समाचार अपडेट और आपके पसंदीदा कार्यक्रम तक 24/7 पहुंच होगी। अपने समुदाय की आवाजों का आनंद लेने के लिए आज ही आधिकारिक CJMR 1320 ऐप डाउनलोड करें। हम समझते हैं कि रेडियो सुनना आपको पसंद है और हम ये भी समझते हैं कि आपकी दिनचर्या आपके हमेशा इसकी अनुमति नहीं देखती। चाहे आप दफ्तर में हो, यात्रा कर रहे हो या टहल रहे हो, आधिकारिक CJMR 1320 ऐप हर कदम पर आपके साथ रहेगा। CJMR लाइव स्ट्रीम तक 24/7 पहुंच के साथ आप लाइव सुन सकते हैं या पुराने शोज डाउनलोड करके ऑफलाइन सुन सकते हैं और एक क्षण भी नहीं चूक सकते। आज ही CJMR 1320 आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें। पेश करने जा रहे हैं CJMR 1320 की आधिकारिक ऐप। आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा समाचार, संस्कृति पेश करने जा रहे हैं CJMR 1320 की आधिकारिक ऐप। आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा समाचार, संस्कृति और समुदाय की जानकारी प्राप्त करते हुए अपने पसंदीदा शो को अनुभव लें। CJMR लाइव स्ट्रीम तक 24/7 पहुंच के साथ कभी भी एक क्षण न चूके। ये ऑफलाइन सुनने के लिए पिछले एपिसोड डाउनलोड करें। ऑफिस से लेकर परिवार के साथ समय समय पर आधिकारिक CJMR 1320 ऐप से जुड़े रहें। अब उपलब्ध है CJMR शहर की आवाज। समुदाय के लिए यह आपका घर है CJMR 1320। समुदाय, संस्कृति और एकता को प्रोत्साहित करना केवल CJMR 1320 पर। शहर की आवाज 1320 CJMR, जहां संस्कृति निवास करती है। यह है CJMR शहर की आवाज, अपने समुदाय की आवाज, शहर की आवाज, CJMR 1320, जहां संस्कृतियां टकराती हैं। CJMR 1320, शहर की आवाज, आपकी आवाज, आपका समुदाय, आपकी संस्कृति, यह है CJMR 1320, शहर की आवाज। संस्कृति के लिए आपका घर, समुदाय और एकता यहां पर है, CJMR 1320, शहर की आवाज।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: दिस इज CJMRAM ऑपरेटिंग ऑन 1320 kHz फ्रॉम मिसिसागा, ऑन्टारियो। वी आर करंटली कंडक्टिंग टेक्निकल टेस्ट अंडर ऑथराइजेशन फ्रॉम इनोवेशन साइंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैनेडा, ISED। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग इंटरफेरेंस विथ योर radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.
2: शहर दी आवाज, दिलां दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 905-799-0045, 0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
4: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
5: ओ यार काव्य, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
6: जेकर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
8: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
9: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कांटेक्ट करो जसबल नु, इट्स 416-818-8900
8: और विजिट www.calidonpaving.com।
10: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
11: ਓ ਜੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
12: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
11: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079, 6477080079।

0: महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 1133 क्रेडिट स्टोन रोड, वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट सेंटर।
2: जीना या मरना इंसान दे हाथ नहीं, परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मा वेले याद रखो, रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम, जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188 Lotus Funeral Home।

0: ਪਛਤਾਉਣਾ।
1: जे बिजनेस दा करना चाहंदे हो प्रचार तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094। शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।
2: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto।

0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca। लव साउथ।
1: हाय, मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे। मेरी निक्की भैन का विआह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
2: क्यों नहीं चन
1: इन्हें सेट, रानी हार, छापा, मुंदरिया, छले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
2: हाँ, नाले मैं सारी दिया बहां भी तमिंगिया करनिया ने, 12 चूड़िया उनू भी ले दांगे।
1: तो मेरे जीजो ली कड़ी,
2: आहो अशोक ज्वेलर को रेडो दिया, रोलेक्स दिया, सारिया कड़िया होंदिया ने।
1: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर, 7198 एयरपोर्ट रोड, मालटन, इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 9056714290।
3: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड लै जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
4: ओ भरावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
3: सच्ची?
4: ओ मुच्ची,
3: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टेसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
4: इना कोला सालना दा तजुर्बा।
3: हुन एड्रेस भी लिखा।
4: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबिकोक, यूनिट 5।
3: कॉल 6476 9257 6477 706 9257।
5: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन अर्शी चावला दे नाल।
6: पंजाबी दिल, अंग्रेजी वाइब, CJMR इज बैक अलाइव। CJMR 1320 आ गया होए, छा गया होए।
7: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल, PR कार्ड, कनेडियन सिटीजन या OCI ली अप्लाई करन दे नाल, विजिटर, टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड, 4550 ईवनज रोड, जून 12 इन ब्रैम्पटन, और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
5: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन अर्श चावला दे नाल।
6: पंजाबी

0: हरमिंदर 416-524-6704
1: 416-524-6704 पे
0: विजिट 140 एडवांस बुलेवार्ड यूनिट नंबर 10 ब्रम्पटन
2: लॉन्ग डिस्टेंस मूविंग स्पेशलिस्ट
0: एच के मूवर्स
3: जो आया से चल सी
4: जीवना जा मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188
5: सिक्का चलदा है। कम्युनिटी तो लंबे अरसे सेवा कर दिया रे मनजीत सिंह फोन नंबर 416-716-7653 या विजिट करो उन्हां दी वेबसाइट www.teammanjeet.ca। कैनेडा दी मन्नी परमानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी शाह ट्रांसपोर्ट नू चाहिदे ने कुछ एक ड्राइवर्स। इमीडिएट हायरिंग हो रही है। ओनर ऑपरेटर्स टीम कंपनी ड्राइवर्स टीम सोलो ड्राइवर्स चाहिदे ने जी कंपनी दे वास्ते। कंसिस्टेंट लराडो टेक्सास डे रन्स स्टेडी माइल्स अते रिलायबल काम पूरा साल दिता जावेगा। वधेरे जानकारी लई कॉल संदीप 416-903-8390। शाह ट्रांसपोर्ट दा यार्ड लोकेटेड है 5758 Dixie Road intersection 401 and Dixie number ek vari phir to 416-903-8390।
6: घर होवे या ऑफिस ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
7: एक्सेस रैंप्स एक्सकावेशन ग्रेडिंग रीसर्फेसिंग ओवरले फार्म ड्राइववे पेविंग ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू इट्स 416-818-8900
6: और विजिट www.calidonpaving.com।
8: रिट्स फर्नीचर दा ये मैसेज जरा ध्यान ना सुनो। सस्ता

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं सिर्फ आवारगी है।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Here we go again Authentic original and better than our right

0: Yo, honey singer.
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

ये बात याद करोगी जब दूर चली जाओगी, बहकने दे मन को और कितना समझाओगी, तड़पोगी जब रेगिस्तान में प्यास लेकर आओगी, कहाँ इतनी प्यास लेकर जाओगी, पीछे मुड़कर देखो तो

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320
1: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है।
2: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो।
1: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार देखा।

प्यार किस्मत से लड़कर जीत सकता है क्या हमारे किस्मत में है इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है जो प्यार जिंदगी दे सकता है क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है

आ बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: is CJMR, the voice of the city, part of White Oaks Communications Group, your trusted local radio provider for more than 70 years.
1: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार तां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM टू 12 PM एंड 6 PM टू 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो। आज ही कॉल करो 416-716-7094।
3: जो आया
4: या मरना इंसान दे हाथ नहीं परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना असाडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 7547-8188 Lotus Funeral Home।

0: तन ते पाया कपड़ा चौवी पाड़ पाड़ के लाउणा ओए मना ना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउणा।
1: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: राजधानी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन जीटीए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अपलायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन। नंबर 9057990045 9057990045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
3: रोज दे खाने तो हो गया बोर,
4: ट्राई करना चाहते हो कुछ होर?
5: ताजे स्वाद दे चाइनीज खाने लई आज ही पहुंचो एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट, 2648 इस्लिंगटन एवेन्यू इटोबीको। फोन नंबर 4167498333 यानी 416-749-8383।
6: दिस इज CJMR, द वॉइस ऑफ द सिटी, पार्ट ऑफ व्हाइट ओक्स कम्युनिकेशंस ग्रुप, योर ट्रस्टेड लोकल रेडियो प्रोवाइडर फॉर मोर देन 70 इयर्स।
7: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM स्प्रिंगडेल डेंटल सेंटर दे नाल।
8: वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, विजडम टूथ, रूट कनाल, डेंचर
9: फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, गम ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट।
7: SM स्प्रिंगडेल डेंटल सेंटर 2260 बोवेट ड्राइव ईस्ट ब्रैम्पटन। बोवेट जिंगूसी डेंटल सेंटर 811 बोवेट ड्राइव यूनिट 17 ब्रैम्पटन। कॉल 9057898266।
10: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है?
11: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
12: जी का तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
7: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन।
2: पील रेनोवेशन दा पैगाम, अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहुंदे हो, सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम भाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाउण लई चेती रखो। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन, एक्सटीमेट बिल्कुल फ्री, एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाउण लई कॉल करो भुपिंदर सिंह 6476481847 6476481847। वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਦਰਾਸੀ, ਤਾਮਿਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ, ਡਰਾਮੇ, ਨਿਊਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475545859 6475558569।
13: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ।
14: ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ ਤੇ ਆਓ, $100 ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਇਲ ਐਨਫੀਲਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, LED TV, ਏਅਰ ਫਰਾਇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ।
13: ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਨਾਜ ਮਾਰਟ 6141 ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ ਯੂਨਿਟ 42A ਬ੍ਰੈਂਟਨ। ਕਾਲ 9059288855।
15: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा व्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र तो फूको बच्चे थे।
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो व्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
5: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
8: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
9: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
8: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
9: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तां मिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
8: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
9: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
8: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 एयरपोर्ट रोड माल, नंबर 9056714290।
10: शादियां ब्याहां वाले मौके आंदे उत्ते पता लगदा नहीं सच्ची काम काज दा।
11: ओ जी इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल वालियां दी हुंदियां तां तैयारियां दी कोई टेंशन ही नहीं।
12: इना कोल टेंट, टेबल, चेयर, LED डांस फ्लोर, फ्लावर एंड डेकोरेशंस, 360 डिग्री कैमरा, सब कुछ मिलेगा। इना कोल छोटे वड्डे हरेक फंक्शन लई अट्रैक्टिव टेंट्स अवेलेबल ने।
11: बुकिंग लई कॉल करो इनफिनिटी टेंट सेंटर कोल 6477080079, 6477080079।
13: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ, अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मिठाइयां अते जायकेदार फूड लई हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जित्थों तुसीं डाइन इन या टेक आउट भी लै सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस लई लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो, 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन। कॉल 905-450-6464-905 450-6464।

0: welding. Mataru welding. Wow. Moose bumper. Deer bumper. Diesel tank lock. Driller ramp. Tire rack. Driller repair. Aluminium plate bumper.
1: Call Sunny Mataru.
2: 647-5356-0-6355.
1: Mataru welding. Unit 1, 98 Rutherford.
3: Mataru welding. Mataru welding.
4: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री ली वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 905-799-0045 9057990045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स
5: विश्वास प्रतीक रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवावां दा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजिहे कमां वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटॉर्नीज बच्चा लई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले
6: बेड डाइनिंग टेबल सोफा कर ले लेना या देना तोहफा
7: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर कस्टम मेड कनेडियन मेड इम्पोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर
6: 7550 किम्बल स्ट्रीट मिसिसागा कॉल 647-382-5500